अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वड़ हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आर जाए अशांत मलेच मार पाए अशांत निंद

निर्विकृता पुरुष निर्भौ निर्वय अकाल मूरत अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक खुशी सत्य सुचे सोच न हो गई

गावन तुतनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे

मैं चित ना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन

रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया, तुद बिन सिद्धी किनै ना पाईया, कर्म मिलै नाही ठाकर हाईया। आख

होई। जेवड आप तेवड तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खसम विसारह ते कम जात, नानक नावै बाज सुनात। राग गुजरी महला चौथा, हार के जन सतगुर सतपुर

सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवासु। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखासु। धन धन सत संगत जित हर रस।

मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिधानु ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल साध बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम पारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा।

जो सेवह तुध जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावह हर त्यावह तुध जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ।

जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया।

साध न जानिया हर राया कहु नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा। जाप तप संजम

बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो आप हाथ दे मुहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिय सब बैरन कौआ संगरिय पूर्ण हुए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है पूजो सदा हमारे पक्षा श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा राख लिहो मोह

किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूठियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब

समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते

साधन के सुखी एक एक पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उदकर्क करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम।

सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दोता गावो हरी।

पुंचै तिस का हुए उधारु एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारु तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारु श्लोक महला।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। तिस साहिब की टेक नानक मन माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: सत्संग जी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाहि भगवती पाचे दशमी प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई जाए बैरंकत गुरदे अमरदास रामदास से भय सहाय अर्जुन हर गोविंद सिमरन श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याग सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है कारण उन्हें ध्यान सहाय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब थाई हुए सहाय दसम पातशाह के पुत्र आत्मक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारदार दत्यांतर के खत से बोलो जी वाहेगुरु। आप जी ने पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपिया वन छकिया देख चलाई तेग भाई देख डिड की दतना प्यार से प्यार नहीं कमाई दत्या अंदर की बोलो जी वाहेगुरु। जन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म ए सीध उत्ते बंद बंद कटवाए कोपड़ियां लवाइया चरखियां ते चढ़े आड़ नचराए गए वो सेवा ते कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सी किसे ते कैसे सत्संग पाया तिना नहीं कमाई दत्या अंदर की बोलो जी वाहेगुरु। गुरुद्वारे दत्या अंदर की बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है श्रीमद खालसा जी की अरदास है जी श्रीमद खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चेता है चेत आवण का सदका सर्व सुखो है जहां जहां गुरु खालसा साहब दर्शा देख देख की फतेह वृत की पहच पंथ की जी श्री साहब जी से आए खालसा जी के बोल बल्ले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब ने दर्शन स्नान क्योंकि यहां चंडे बूंगे जुग जुग अटल धर्म क्या जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखा का मन नीवा मत उची मत पत के रख के आप वाहेगुरु। गुरु की गुरुआज पंथ सदा सहाय दया जी गुरुद्वारा निकाणा साहब पंजा साहब गुरु गुरुद्वारे गुरु राम जी ने तो आपके पंथ को छोड़ गया है उन्होंने गुरु दर्शन की दार से समाल दता है अपने खालसा जी ने बख्शो ये लोटियां की ओट गुरु न्यासियां आसरे गुरु धन धन गुरु दार जी हो आपके चरण कामना अरदास ने दार अपनी बख्श की है आपके चरण पितर गुरबाणी सुखमणि साहब के पाठ दता है ऐसे संध्या समय जान के आपके चरण सोर दर रह सद पाठ की दिन कृपा करो कुइया भुला चुका ने माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सच कहने प्रमाण करो बाणी का भाव सारिया संगतान हृदय सारी वार्ता करो जी अगो तो शोध पितर बाणी टाली बार बुद्धि बख्शिश करो भी मैं आज इस खुशी में आप दी बच्चियां दातों में पितर कलाम साहब जगह त्याग कर हाजिर दतार आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद सात संगत ग्रस्तना लायक होवे जो जी सके श्वास श्वास पितर नाम जब बख्शी करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखां का प्रकाश करो देव दे रखा बख्श करो जी की मनवाज कृपा करो आपकी बख्शियां दातों की नगर तुर सवारियां प्रवान करनी तार कृपा करो आपके चरण सेवा कर रहे सारे टैली सिंह सिंगड़ियां तंदुरुस्ती बख्शो चाटिकला बख्शो सदा इसे तरह अपने चरण सेवा की भावना बख्शी वालता करो गरीब रिवाज अमृत वे तो लैके दरते आई हैं सब संगतों की हाजरी दर प्रवान करो घड़िया लिख के लाओ संगता दर के तिर फुल बेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी संतान ग्रंथ तार पिता जी आचार कमर दास जी दर तार पिता जी हो आज दर के सेवा दार भाई मनप्रीत सिंह जी ने आप नवी कार की दाज बख्शी की धनबाद कर दिया बेहद माया के हाजिर तार प्रवान करो बच कर दे तार जी भाई मनप्रीत सिंह नवी कार सुखड़ी करनी सबर कर होके अपनी सेवक आप रखा अपनी बात का कार्य तार कृपा करो जी तार जी स्वर्गवासी सरदार नूर सिंह जी बसी देर जी उन्हें आत्म शांति वास्ते बेहद माया परिवार को आदि चरना पेटा की प्रवान दार बख्शी करो सरदार सूर सिंह दार दूर सिंह राम समाज लोग की यात्रा करते हुए भुला चुके माही बख्शनी उन्होंने गुड़ों के नाज कर दें आत्म चरना ही नवाज बख्शो ठंड बख्शो आत्मनिवाज चो बचा के परिवार को बच्चों रिश्तेदारों भाणा भी नहीं बल विवाद बख्शो परिवार सुख रखो दीज दुआ बख्श कर दार बिछड़ी हुई आत्मन शांति बख्शो जी गुरु जी मैं मेहर को दार जी हो आप जर के पातशाह जी भाई प्रीतम सिंह वीरपाल को नवा घर बुला रही चाज अड़चन आ रही हैं तो आप परिवार को मेहनत मार पेटा की अरदास दिन कर नवा घर बना लगे तो आप अंश सहायता बख्शो मेरे पर अपने सिरत रखो तो आ रही अड़चन के तार आप दूर करके सेहत को नवा घर बनाने वास्ते हिम्मत बख्शो ताकत बख्शो बल ताकत बख्शो समा बख्शी करने की बालता करो दास सेवकों दिया शुभकामना आशा बराधा पूरी करो कमाइया सबल करो दाते इलाज पत्र रखो जी सचे पातशाह जी हो अज दर का सेवादार गरीब नवाज सचे पातशाह जी हो भाई परमजीत सिंह दिल्ली वाले की देर रुकता वास्ते उन्होंने वालों अरदास बेनती है कृपा करो सचे पातशाह जी भाई परमजीत सिंह तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो कृपा करके दार चाली कले बख्शी करके बालता करो अपने चरण से और दाल बख्शी करो जी गुरु जी मेरा दरबार मेहर करो सचे पातशाह जी हो खालसा पंथ सेख कौम एक तरफ भाग पे आज बख्शी करके सत दाल बख्शो चरना जोड़े जोड़ने प्यार बख्शी बालता करनी गरीब
1: ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਸੰਗਤਾਂ ਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਈਵ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰੋ, ਘੜੀਆਂ ਲੇਖ ਲਓ, ਆਪ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪੇਟਾ ਕਾਰੀ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਸਭ ਕਰੋ, ਕਾਰਜ ਵੱਧ ਵੱਧ ਤਾਰ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਵਸਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਹੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਪੁਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਬਖਸ਼ੋ, ਵੇਦਰ ਗੁਨਾਮ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਹਮਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਸਵਾਰ ਕੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦ ਬਣਾਓ, ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੇਵਾ ਨਿਕਲਵਾ ਦੇ ਸਾਰ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ ਕੋਜ ਜਬਦ ਮਹਿਲ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਗੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੇ ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ

करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैपं गुरप्रसाद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयो साहिब सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब कृपालु सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शामा दे दीवान दी हाजरी पर रही गुरु रूप साध संग जी आप जी वडभागी हो जो गुरु बख्शिश गुरु कृपा सदका पावन गुरु दरबार अंदर संगती रूप विच जुड़ बैठे हो गुरु दियां असीसां रहमतां प्राप्त कर रहे हो। बहुत ही प्यार दे नाल अमृतमई गुरबाणी दा कीर्तन भाई सह भाई ओंकार सिंह जी पासों आप जी ने सरवण कीता है। आओ समा होया अमृत बाणी दी विचार दा जो गुरु कृपा सदका विशेष उपराला कीता गया है कि सितंबर दा महीना जो साहिब सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दा 12 सितंबर नूं पहला प्रकाश पुरब आ रहा है उदे संबंध अंदर इस सारा महीना ही सतगुरां दे पावन प्रकाश पुरब नूं समर्पित है ते वख वख रूप विच गुरमत समागम पावन गुरु घर वल्लों उलीके गए हन। उन्हां विचों इक इह उपराला कीता गया है कि श्री जपजी साहिब जी दी कथा शामां दे समें हर रोज होया करेगी। कल पावन पवित्र बाणी दी कथा प्रारंभ हुई सी सत्कारयोग भाई साहिब भाई ज्ञानी लखविंदर सिंह जी जिन्हां ने आप जी नूं तकरीबन एक महीना एक कथा सरवण करवाउणी है। अज उन्हां दी सेहत नासाज सी भाव थोड़ी सेहत उन्हां दी ठीक नहीं सी इस करके गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी दे रहमत तर सदका आप संगत दे नाल पावन पवित्र बाणी दी श्री जपजी साहिब जी दी कथा अज दास साहिब जी दे नाल सांझ पाएगा। सब तो पहला जो मूल मंत्र दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है दतार पिता महाराज धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे श्री मुख तो श्री कंठ तो इस पावन पवित्र मूल मंत्र दी महामंत्र दी बख्शिश रहमत समुची मानवता नूं प्रदान हुई है। आपां इस पावन पवित्र मूल मंत्र दे अज अर्थ करने हन। गुरु कृपा करे सबना नूं चढ़दी कला बख्शिश करके सुनन विचारन दी दात प्रदान करे। आओ विचारां दी रंभता तो पहला रसना दी पवित्रता वास्ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ फिर उच्चारण करो जी।

यह विनंती सुन प्रभु मेरे, दे नाम कर अपने चेर। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला तीजा। काचा तन संच है मूरख गवार, मन मुख भूले अंध गावार। बिखिया कै तन

प्रभुसात अष्टपदी। जय मात पिता सुतमीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाप्यान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल हो वै अत भारी, हर को नाम किन माए उधारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन परे, हर का नाम जपत निस्तरे। अनिक माया रंग तिक न बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जे मार गिर जात अकेला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नामन सदा त्याई, नानक गुरमुख परम गत पाई। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत है पार पुराही। अनिक बिघन जय आई संगार है, हर का नाम तत्काल उदार है। अनिक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हौ मैला मल कबु न तोवै, हर का नाम कूट पाव कोवै। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाई साध कै संग। जे मार के गन जाहे न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जे पैटे मांद बुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहा पंथ तेरा को न सुनू, हर का नाम तह नाल पछानू। जय महाप्यान तपत भुकाम, तै हर के नाम की तुम परछाम। जहा त्रिखा मन तुझ आकर खै, तह नानक हर हर अमृत बरख। भक्त जना की बर्तन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औकद साध कमात। हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंगे कै, नानक जन कै बिरत विवेकै। हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परे न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाही बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जीना, हर तन जन कुआ प्रभ दीना। हर हर जन कै ऊट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे। पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत ऋद्वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई, संत की सेवा नाम ते आई। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमूल। अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सुर ध्यान, खट शास्त्र सिमृत विख्यान। योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया, सगल त्याग वन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कराती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपी एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै, मह उदास तपी सर थीवै। अग्न माए होमत पुराण, कनिकसव है वर भूमदान। न्यौली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम साधन। निमक निमक कर शरीर कटावे, तौ भी हम मैं मैल न जावे।
ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗੁਪਤ ਪਾਹੀ, ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁਟੈ, ਗਰਭ ਗਮਾਨ ਨ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ, ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਸਰ ਰਾਤ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ, ਜਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ, ਸੁਧ ਕਾ ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਭੀਤ, ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਤ ਬਹੁਮੂਚ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ, ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰ ਤ੍ਰਿਸੰਨਾ ਧਰਾਪੈ, ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਗੰਨੀ ਬੁਝੈ, ਕੋਟ ਉਪਾਵ ਦਰ ਗਹਿਣੀ ਸਿਜੈ, ਝੂਠ ਸਨਾਹੀ ਉਪਿਆ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ, ਅਵਰ ਕਰਤੂ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੀ ਕੋ ਮਾਗੈ, ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ, ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦਗਾਵੈ, ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹੋ ਮੈਂ ਛੂਰੈ, ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ, ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸਰਮੀ ਪਰੈ, ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ, ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਵਾਪਿਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਣੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਇ ਸਗਲ ਕਿਰੀਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਵੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੀ ਲੇਪਾ, ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ, ਨਿਤਾਵੇ ਕਉ ਨਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ, ਨਿਮਾਣੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇਵ ਦਾਨ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਨ ਹੋ ਆਪੇ, ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਵਰਾਤੇ, ਤੁਮਰੀ ਉਸਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਵਰ ਨ ਜਾਣ ਸਕੋਏ, ਸਰਵ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ, ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ, ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਮ ਥਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਘਟ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਲੋਕ

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन बोलते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिंगारिया गर्भ अग्न में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोगन भोजन सुख सूद बिरध पयाओ पर साख सैन मुख पयाओ बैठ को दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श ले हो तो नानक सीजै जे प्रसाद तारू पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमुला जे प्रसाद भूगै सबरसा सगल समग्री संसात बसा दीने हस्त पाव करने तरसना तिसै त्याग वर संगरचना ऐसे दोख मुड़ंद व्यापे नानक काढ़ लियो प्रव्यापे आद अंत जो राखन हारु तिस्यो प्रीत न करे गुवारु जाकी सेवा नवनित पावे तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सत सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगह मानु तिसै बिसारे मुग्ध अजान सदा सदा यो भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्द प्रीत पसम संग होए अंधकूप में पतत विकराल नानक काढ़ ले हो प्रभु दयाल करतूत पशु की मांस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया छप सुनाई कछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्या पैलो सुवान अंतर अग्न बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसे तरह अथाह जाके अंतर बसै प्रभ्या नानक तेजन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गहले हो ओढ़ निभावै कहां बुजारत बुझै डूरा निष्कहियै तो समझै पूरा कहां बिशन पद गावै गुंग जतन करै तो भी सुर भंग कह पिंगल

नानक तुमरी कृपा तरह संग सहाई सुआवे ना चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसे आनंद कील माया रंग रसै दृढ़ कर मन है मन प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह या हो जुगत बेहाने कई जन्म नानक राख लहु अपन कर कर्म तूठा

अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्तु कारण बिखोट गवावै। एक भी ना दे दस भी हिर ले, तो मूड़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर स्यो ना ही चारा, ताको कीजै सद नमस्कारा।

सो प्रभ सिमरहो सदा अनूप ते प्रसाद त्रिनी की जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कहे।

जिह प्रसाद सुख सहजी बसना, जिह प्रसाद हस्त कर चल है, जिह प्रसाद संपूर्ण फल है, जिह प्रसाद परम गत भाव है, जिह प्रसाद सुख सह सुमाव है। ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागहु, गुर प्रसाद नानक मन जागहु, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभु को मूल न मन हो विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ता कहु जाप।

देवता स्योराचो जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सोहर गुण गाओ प्रभ कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सुप्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी मया आप कछु न किन्हू लया जित जित लावो तित लग है हरनाथ नानकिन कै कछु नहात श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुखता होए सुन मीता नानक बिनवंता साजना की चर्ज कथाष्टपदी साधक संग मुखु जल होत साध संग मल सगली खोत साधक संग टै अभिमानु साधक संग प्रगटै सुज्ञान साधक संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साधक संग पाए नाम रतनु साधक संग एकु पर जतनु साध की महिमा बरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्माहि समानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ल साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुई सब कीरेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कतहुं तावै साध संग स्थित मन पावे साध के संग माया ते भिन्नु साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न झा संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत साध संग के स्यो नहीं बैर साध के संग न बीघा पैर साध के संग ना ही को मंदा साध संग जानी परमानंदा साध के संग ना ही होताप साध के संग तजै सबे आप आपे जाने साध बड़ाई नानक साध प्रभु बन आई साध के संग ना कबहू तावै साध के संग सदा सुख पावै साध संग बस्ता गोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साधु कै संग अजर सहै साधक संग बसै थान उचै साधु कै संग महल पहुँचै साधक संग दृढ़ सब धर्मु साधक संग केवल पार ब्रह्मु साधक संग पाए नाम निदानु नानक साधु कै कुर्बानु साध कै संग सब कुल उदारै साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय कर सेवा साधक संग सो बासुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्व थान गमु नानक साधक संग सफल जनमु साधक संग नहीं कछ कालो दर्शन भेटत होत निहाल साधक संग कलोकत हरै साधक संग नरक पर हरै साधक संग इहां उहां सुहेला साध संग विचरत हर मेला जो इच्छै सोई फल पावै साधक संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साधरित बसै नानक उदरै साध संग रसै साधक संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साधक संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध पिटे संजोग साध की महिमा भेद न जानै जीता सुनै तीता बख्यानै साध की उपमा त्यो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूछ ते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै कछु बिन कोए नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अली ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व कौशोक ब्रह्म ज्ञानी कै दृश्यमान जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यों वसुदा को खोदै को चंद्र लेप ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ नानक ज्यों पावक का सह सुभाओ
ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तारू पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा, मने अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पै, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभु संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभा, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माही। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाय अदाख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी कंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक उर धारै जो अंतरनाम, सर्व में पिखै भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानको पर सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना पर, समन में प्रीत निरंजन दर्श। पर त्रै रूप न पेखै नेत्र, साध की टैर संसंग हेत। कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद विख्या पर हरै, मन की वासना मन ते टरै। इंद्रिय चित पंच दोग ते रहै, तो नानक कोट मध्य को ऐसा परस। वैष्णु सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते हुए भिन्न। कर्म करत हुआ नहीं कर्म, तिस वैष्णु का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे। मंथने अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ ब्रह नाम जपावे, नानक को वैष्णु परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग। मनते बिन सह सगला भरम, कर पूजय सगल पार ब्रह्म। सासुन पापा मल खूव, तिस भगवती की मत उत्तम हो। भगवंत की टहल करै नित नीत, मंथन अर्पै विष्णु प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक कैसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन पर बुद्धै, राम नाम आत्म सुदै। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उदय जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो ना आवै। वेद प्राण सिमरत बुझै मूल, सुख मै जानै अस्तूल। चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, सासुं पावै जन कोए। कर कृपांतर उतारै, पस प्रेत मूत पात्र को उतारै। सर्व रूप का उकद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत कितै न पाइय, धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म।
जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिसने दरी आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सूझी परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी युक्त नानक राम दास, प्रभु की आज्ञा तुमितावे, जीवन मुख सुख कहावे, तैसा हर्क तैसा सुख, सदानंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वर्ता ईसाई जुगत नानक को पुर कहिए, जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ, जित जित कर राखे, तैसा तिन्ना हो, आपे करन करावन जोग, प्रभावे सोई फन हो, पसर आप अंतरंग लखे न जाहे, पार ब्रह्म के रंग जैसी मध्य, तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहि निहाल, सलोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पार अवार, नानक रचना प्रवरची, बहुविधनिक प्रकार अष्टपदी, कई कोट होए पूजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पहि तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान तारै, कई कोट कबका विचार है, कई कोट नवतन नाम त्यावै, नानक करते कंत न पावै, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अपेगात्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को ही रह, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रमाए, कई कोट प्रदेश प्रमाए, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जान है करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर वृक्ष निप जाए, कई कोट पवन पानी वैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट शस्य सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूतार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राज ताम सात, कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र, कई कोट कीर्तन संबंध, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जकी नर पिशाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गा, सब ते नीर सबू ते दूर, नानका फलिप त्रया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन मह जीवै मरै, कई कोट भोजो नी फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट कालै थक पाहे, कई कोट कीर्तनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जय जय पाणा तै तै राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिलो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हो आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट काणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जोत की नो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एक कंकार, कई कोट की ने बपात, प्रभते हुए प्रमाय समात, ताकांत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सुधा निहार है को नित्रे, कई कोट नाम रस पीवै, अमर पैसा सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सह समावै, अपने जन को साथ साथ समारे, नानक होए परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभे कह, दूसर नाही कोए, नानक इस बले हार न, जल थिल मही रसोए, अष्टपदी करण करावन करण जोग, जो तिस पावै सोई हो, किनमे तापो तापन हारा, अंत नहीं किछ पार आवारा, हुक्मे तार तर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे उच नीच व्यवहार, हुक्मे निकरंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक समय रहा समाई, प्रभावै मानुगत पावै, प्रभावै तां पात्र त्रावै, प्रभावै बिन शास्त्र राखै, प्रभावै तां हर गुण पाकै, प्रभावै तां पत सुधारै, आप करै अपन विचारै, दोहा सिरिया काप स्वामी, खेलै विकसै अंतर जामी, जो भावै सुकार करावै, नानक दृष्टि अवरण आवै, कहो मानुक ते क्या हुए आवै, जो तिस भावै सोई करावै, इसके हाथ विच सब किछ लै, जो तिस भावै सोई करे, अनजानत विख्या मैं रचै, जे जानत अपना बचै, भरमे भूला दै जिस धावै, निमक माय चार कुंट फिरे आवै, कर कृपा जिस अपनी भग दे, नानक तेजन ना मिले, किन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज,
ਜਾਂ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ ਕਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਾ ਦਿਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਕਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਕੀ ਰਾਸ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਪਣੀ ਬਣਤਾ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਾਹੀ ਸਹਾਤ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਰਬ ਕੁਨਾਥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਉ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਪੁੰਥੀਓ ਕਬਹੂ ਉਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਬਸੈ ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ ਕਬਹੂ ਉਪਕਾਸ ਪਿਆਲ ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾ ਬਨਹਾਰ ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਭਾਤ ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ ਕਰੂੰ ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ ਕਬਹੂ ਭੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ਕਬਹੂ ਅਪਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੈ ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਲ ਕਬਹੂ ਮੋਹਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ ਕਬੂ ਤੜਤੀ ਤੇ ਸਨਾਨ ਕਬੂ ਸਿਰ ਸਾਧਕ ਮੁਕਿਆਨ ਕਬੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ ਅਨਕ ਜੋਨ ਭਰਮੈ ਪਰਮੀਆ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਗੀ ਦਿਖਾਵੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਿਚਾਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਕਬੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਪਾਵੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਕਰੰਗ ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਕਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਕੇ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮਸਕੀਨੀ ਆਇ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਵਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋ ਸਵਾਨ ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ ਸੋ ਬੁਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਵੰਤ ਕਹਾਵੈ ਜਿਨ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੁਨ ਪ੍ਰਮਾਵੈ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ ਨਾਨਕੀ ਹਾਂ ਮੁਕਤਾ ਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੈ ਬੋਲਸ ਕਰਮਾ ਅਨੁਕੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਸ ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ ਕਿਸੈ ਨਵਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਿਸ ਕਰੇ ਕੁਵਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਬਿਮਾਨ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਹੋ ਧਾਰੀ ਸੁਨ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਧਾਰੀ ਅਨਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਅਨਿਕ ਜਿਤਨ ਕਰਾਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ ਹਰ ਦਰਗੈ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ਆਪਸ ਕਹੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਂਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝਤੇ ਕਛ ਹੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ ਜਬ ਧਾਰੇ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨਿਚਲ ਨਾਹੀ ਜੀਤ ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸੁਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਉਹ ਛੁੱਟੈ ਸਹਿਜ ਕਟੇ ਲਗ ਕੋਟ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੀ ਕਰੈ ਨੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਵੈ ਖਪ ਕਮਰੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਬਿਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਇਸਕੇ ਹੱਥ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਜੈਸੀ ਦਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭੂ ਕੈ ਸੰਗੂ ਜੈ ਦੇਖੇ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕਾ ਪੈ ਕਾ ਪੈ ਅਨੇਕ ਮਰੈ ਨਵਿਨ ਸਹਿ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਸਮਝੈ ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ ਆਪ ਕਿਨੂੰ ਆਪਣ ਵਿਸਤਾਰ ਸਭ ਕਛ ਕਹੋ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ ਥਾਂ ਤਨੰਤਰੇ ਕੈ ਸੋਏ ਆਪਣੇ ਚਲ ਤਾਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਕਹੋ ਤੋ ਕਰੈ ਰੰਗ ਆਪ ਹਾਰ ਮਨ ਮੈਂ ਅਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿੰਨੇ ਵਖਿਆਨੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਤ ਸਭ ਕਿੰਨਾ ਕੋਟ ਮਧੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲ ਲੈ ਚੀਨਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਆ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰਣੂਪ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੁਣੀ ਸ੍ਰਵਣ ਵਖਿਆਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਆਰ ਜਾ ਘਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ
संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखै न कोई, संत कै दुखन तान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जी करै, नानक संसंग निंदक भीतर है। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जो लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिग जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मैं चले, संत कै दुखन सब कुछ चले, संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का था को नाहे, नानक संत पावै तो पीगत पाए, संत का निंदक मात दाए, संत का निंदक घंटिक न पाए, संत का निंदक मा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक को सर्वरो, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दुख मैं दोख, नान संत पावे तो उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसै का निमित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी माँ अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख टिटर है, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नान संत पावे तो ले मिलाए, संत का दुखी अदबीज ते टूटे, संत का दुखी कितने काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान फरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते तोता, ज्यो सास बिना मृतक की लोता, संत के दुखी की जड़ किच ना है, अपन बीज आपे ही खाए, संत के दुखी गवर न रखना, नानक संत भावै तां लैयो भार, संत का दुखियों बिल लाए, ज्यों जल बिहों मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पाव किंदर नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै केला, ज्यों बुआड़ तिलखेत माहे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदमिथिया कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस भावै सोई थया, संत का दुखी विघड रूप जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी न मरै न जीवाइए, संत के दुखी की पुजै न आसा, संत का दुखी उठ चलै निराशा, संत का दुख न तृष्टै कोई, जैसा भावै तैसा कोई होए, पै किरत न मिटै कोई, नानक जानै सच्चा सोए, सब कर तिसके उकर निहार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तुत करो दिन रात, सत्याहु सास गिरा, सब कुछ वर्तै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खिलाफ करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिस अपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से, श्लोक तजो सियान सुरजनो, सिमरो हर हर राय, एक आसा हर मन रखो, नानक दुख परम पहु जाय, अष्टपदी मानुक की टेक वृत्ति सब जान, देवन को एक कै भगवान, जिसका दिया रह घाय, भवन दर्शन लग गया, मारे रखे कुआ, मानु कै कुछ ना ही आ, तिसका हुकुम भू सुख होए, तिसका नाम रखंड पुरोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन लाग गए कोई, उस्त मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसन अमृत पी, उसका सुहेला कर लह जियो, नैनो पेटा कुरकार अंग, सास मुगिन सह सब संग, चरण चलो बार गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दर गै नानक पूजन मथा, बड़पागी ते जन जग माहे, सदा सुधार के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गुणि संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पहचाने, तुतकी उस जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्हें निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, सा संग हर हर जस कहे, सर्व लोक ते हर जस है, तन तन कीर्तन केवल बख्यान, गृष्ट में सोई निर्भर, गृष्ट में सोई निर्वाण, एक ऊपर जे जन की आशा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नान तिसे न लागे दूख, जिसको हर ब्रह्म चित आवै, सो सम सुहेला नहीं दुलावै, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किस ते डरै, जैसा सत्य सदृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर।

नाम के तारी पुरिया सब पवन नाम के संग उतरे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सूजन गत पाए। रूप सत जा का सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सतपुरख समाय समानी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत्त सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नान गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जंजा कर दे प्रवेश सत नृत बुझै जे कोई नाम जपता की गत होई आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिर सो करण है हार वर्ण भूज करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष भावे सो वर्तिया विस्मन विस्म भय विस्माद जिन बूझया तिसाया स्वाद प्रभ कै रंग राज जन रहे गुरु कै वचन पदार्थ लहे वे दाते दुख काट नहार जाके संग करे संसार जन का सेवक सो वडभागी जन कै संग लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक फल पावे। श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जा सुनता भुजनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कर दे विश्वास प्रभे आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया पै ते निर्भउ होए पसाना जिस ते उपजा तिस माय समाना बस माहेले बस गडाई ताको पिन्ना कहना जाई बुझे बुझन हार भवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रवतार है नानक सो सेवक साथ साथ सुमार है अपने जन का परदा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे ताकि गत मित कोई न राखे प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक उस देव चे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दा तिस प्रगटाया निक्की कीरी में कल राखे पसम करे लश्कर कोट लाखे जिसका सास न काट था पोता को राख देकर हाथ मानस जतन करत बहुपात तिसके कर्तव्य व्यर्थ जात मारण राखे अवर न कोई सर्व जिया का रखा सोई काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रबलक विडानी बार बार बार प्रभु जपिय पिय मृत्यु मन तंत्र पिय नाम रतंजन गुरमुख पाया तिसके चवर नाहीं दृष्टाया नाम तान नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम रजो जन त्रिपताने मंत्र नाम में नाम समाने उठत बैठ सोवत नाम कौ नानक जन कै सुदकाम भोलो जा जीवा दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात करे भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने शव रह समाय जो हुआ हो सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचाने तिसकी महिमा कौन बखानू तिसका गुण कह न जानू आठ पैर प्रभ सहजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मन तने अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु बचाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श पाव मिटावे और सियानव सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान हुई तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाओ तिसका संग सिख उतरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुरु सिखी करे प्रतपाल सेवक कौ गुरु सदा दयाल सिखी गुरु दुरमत मल ही रह गुरु बचनी हर नाम उचरे सतगुरु सिखे बंधन काटे गुरु का सिख विकार ते हटे सतगुरु सिख को नाम धन दे गुरु का सिख वडभागी है सतगुरु सिख का हल्त फल सुवारे नानक सतगुरु सिखो जी नाल सुमारे गुर कै ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आप उसको कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे
मन विचै सतगुर के पात, इस सेवक के काज राज। सेवा करत हुए ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेव गुर की मत ले। बीस विश्वे गुर का मन मान, सो सेवक परमेश्वर की गत जान। सो सतगुर जिसे हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कच परम। सह सियान को लया न जाइये, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइये। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसद चरण गत निर्मल रीत। भेट संग्राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुनकर वचन करण आघाने, मन संतोखा तुम पतियाने। पूरा गुर क्यों जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पिख है वो संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नान जिस भाव है तिसले मिलाए। जे बाय कुस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण भवे। काहू बोलना पौचित प्राणी, गम गोचर प्रभ निर्बानी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाए। अनेक भगत बंधन नित करे, चरण कमल हृदय सिमरे। सद बलिहारी सदगुरु अपने, नान जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। यो हरस पावे जिन कोय, अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुर का नहीं कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास। आठ पैर हर का नाम ले, सच वदे सेवक को दे। मु माया के संग न ले, मन मेरा कह हर हरे। अंधकार दीपक प्रगासी, नानक परमु दुख तहते नासी। तप्त माय टाड वरताए, अनंत भया दुख ना ठेपाए। जन मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। पौ चुका निर्पोहे बसे, सगल ब्याज मंते खै नसे। जिसका साथ इन कृपा तारी, सास जप नाम बरारी। थित पाई चुके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जश्रवन। निर्गुणाव सरगुण पियो, ही कला तार जिन सगली मोही। अपने चत प्रभाव बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिंदु जाना ही कोई, सर्व निरंतर को सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग, भय प्रकाश साध कै संग। रच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलिहारी। श्लोक सात न चाले बिन भजन, विखे सगली चार। हर हर नाम कमावना, नानक उतन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार। एक सिमर नाम आधार, अवर पाप समीत विसारो। चरण कुण हृद मैं उतारो, कारण कारण सो प्रभ सम्रात। दृढ़ कर गहो नाम हर वाते, धन संचो हो। भगवान संत जना का निर्मल मंत, एक आसरा खो मन भाई। सर्व रोग नानक मिट जाहे, जिस तन काओ चार कुण टुटता वै। सो तन हर सेवा ते पावे, जिस सुख नित बाचे मी। सो सुख साधु संग प्रीत, जिस सुबा को करे भली करनी। सा सुबा भज हर की सरनी, अनिक पावी रोग न जाए। रोग मिटाए हर कदलाए, सर्व निदान में हर नाम निदान। जप नानक दरगह परवान, मन प्रभु तो हर कहनाए। दह दिस ताव बैठाए, ताको बिघन लागे कोए। जाके हृदय बसे हर सोए, कल ताती ठंडा हर नाओ। सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन सह पूर्ण हो आस। भगत पाए आत्म प्रगास, तित कर जाए बसे विनासी। कहु नानक काटी जमपासी, तत विचार कह जन साचा। जन मरे सुचो काचा, आवागमन मिटै प्रभु सेव। आप त्याग शरण गुरुदेव, रतन जन्म का हुए उद्धार। हर हर सिमर प्राण आधार, अनिक पावना छुटन हारे। सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए। मन बंशत नानक फल पाए, संग न चालस तेरे तना। तू क्या लपटाव है मूर्ख मना, सुतमीत कुटंबर बनता। इनते कहो तुम कवन सुनाथा, राज रंग माया विस्तार। इनते कहो कवन छुटकार, असहस्ती रथ सवारी। झूठा डंप झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे न बिगाना। नाम विसार नानक पछताना, गुर की मातू ले आने। भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करो मन मीत। निर्मल होए तुम्हारू ची, चरण कमल राखो मन माहे। जन्म जन्म के किल विख जाहे, आप जपहो अबरा नाम जपावो। सुनत कहत रहत गत पावो, सार भूत सत हर को नाओ। सह सुभाय नानु गुण गाओ, गुण गाव त्रिउत्र समैल। बिन सजाए हम मैं बिख फैल, उहे अचिंत बसै सुख नाल। सास ग्रासर नाम सुभाल, चाड़ सियानु सगली मना। सा संग पावे सच तना, हर पूंजी संच करो बिहार। इहां सुख दर गै जयकार, सर्व ने अंतर एक को देख।
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤ ਕਲੇ ਖੇਕੋ ਜਪ ਇੱਕੋ ਸਾ ਲਾਹੇ ਇੱਕ ਸਿਮਰ ਇੱਕੋ ਮਨੇ ਆਹੇ ਇੱਕ ਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਅਨੰਤ ਮੰਥਨ ਜਾਪ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਇੱਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰਿਆਪ ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਅਨਿਕ ਵਿਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਭਈ ਕਰਾਧ ਪ੍ਰਾਛਤ ਗਏ ਮੰਥਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਵਰਾਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਤਾ ਸਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭੇ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਣ ਆਏ ਨਾਨਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਮਾਂਗੋ ਧੂਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਾ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੈ ਧਿਆਵੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਕਰੂੰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤਨੀਤ ਏਕੋ ਟੇਕੋ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਹੋਏ ਅਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ ਜਿਨ ਚਾਕਿਆ ਸੇ ਜੰਤਰ ਬਤਾਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ ਸੁਭਾਰ ਪਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਰੇ ਸਰਨਾਨ ਸਭ ਤਿਆਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਅੰਦਿਨ ਲਿਵਲਾਗ ਬਡਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲ ਸੇਵਕ ਕਿਨੂ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਖ ਜਨ ਭਇਆ ਜਨਮ ਬੰਧੂ ਭਰਮ ਗਇਆ ਇਛਪੁਨੀ ਸਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹਜੂਰੀ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥਿਨ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਗਣ ਮੈ ਰਾਖੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਵਿਖਤੇ ਕਾਢੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਕਾਢੈ ਗੁਰਪੂਰੈ ਤਤੇ ਹੈ ਬੁਝਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਮਾਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਆਪ ਜਪੋ ਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਭਗਤ ਪਾਇ ਧਰੀਐ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋ ਸੀਚਾਰ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਦਨਾਮ ਬੂਢਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ ਸਗਲ ਦੁੱਖਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਤਾਸ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਚਾਓ ਮੰਤਨ ਅੰਤਰ ਹੀ ਸੁਆਉ ਨਿਤਰੋ ਪਿਕ ਦਰ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿਕਸੈ ਸਾਹ ਚਰਨ ਧੋਏ ਭਗ ਜਨਾ ਕੈ ਮੰਤਰ ਰੰਗ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਵੈ ਸੰਗ ਏਕ ਬਸਦੀ ਜੈ ਕਰਮਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਰਿਹਾ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਅਕਸਨ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਗਤ ਵਛਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਭਗ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋਏ ਪ੍ਰਨੀਤ ਭਗਤ ਪਾਇ ਲਾਵੈ ਮਨਹੀਤ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਸਰਬੈ ਕੁੰਡ ਮੁਕਤ ਮੁਖ ਪਾਏ ਕਿਨਮ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨਿਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਪਾਈ ਬੋ ਭੋਜਨ ਕਪੁਰ ਸੰਗੀਤ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ ਭਲੀ ਸੁਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ ਹਿਰਦੈ ਵਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਲੋਕ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਣ ਕੀ ਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾ ਬਸ਼ਟਪਦੀ ਜਬ ਕਾਰ ਕਛਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਤਾ ਪਾਪੁਨ ਤਬ ਕਹਿਤੇ ਹੋਤਾ ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਣ ਸੁਨ ਸਮਾਤ ਤਾ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਸੰਕਮਾਤ ਜਬ ਇਸਕਾ ਵਰਣ ਚਿਹਨਾ ਜਾਪਤ ਤਬ ਹਰਖ ਸੋ ਕਉ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਜਬ ਆਪਣ ਆਪ ਆਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਕਿਸੋਵਤ ਭਰਮ ਆਪਣ ਖੇਲਾ ਵਰਤੀਜਾ ਨਾਨਕ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨ ਦੂਜਾ ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤ ਕਉ ਕਿਸ ਕਉ ਗਨੀ ਜਬ ਇਕੈ ਹਰਗਮਾ ਪਾਰ ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੋ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਤਬ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਕਹੋ ਕਿਤ ਠਾਏ ਜਬ ਆਪ ਹੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋ ਧਰੈ ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ ਆਪਣ ਚਲ ਤਾਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਅਵਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਣ ਆਸਨ ਤੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਉ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਤਬ ਜਮਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ ਜਬ ਅਭਿਗਤ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ਤਬ ਚਿਤ੍ਰਗੁਪਤ ਕਿਛ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਗੋਚਰ ਗਾਦੀ
तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाते, आपन आपा पिए चर जा, नकापन रूपा पिय पर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तय कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तय चल छिद्र लगत को कीश। जय जो स्वरूपी जो संग समावे, तय किसे भू कवन तृप्तावे। करन करावन करने हार, नानक करते का नाही समार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कलाया पै फिर भी, तह वेद कतेव का कोची। जब अपन आपा पुर धारे, तो सगन अब सगन का विचार है। जय अपन ऊच अपन अपनीरा, तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्मा, नानक अपनी गत जान हुआ। जय अचल छेद भेस माया, वहां किस है व्यापत माया। आपस को अप है आदेश, क्यों गुण का ना ही प्रवेश। जय कह एक एक भगवंता, ते कौन चिंत किस लागे चिंता। जय अपन आप पतियारा, ते कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊचते ऊंचा, नानक आपस को अप है पहुंचा। जय अप्रचियो प्रपंच कार, त्यो गुण में किन्नो विस्तार। पाप उनते पई कहावत, को नरक को सुर्ग वंचावत। हाल जाल माया जंजाल, हो मैं मोह परम पै भार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार की उपख्यान। अपन खेल आप कर दिखे, खेल संकुचे तो नानक कह। जय अभिगत भगत आप, जय पसरै पासार संत प्रताप। दू पाकाया पेतनी, उनकी सुबानु बनी। आप कौत करे अनद चूज, आप रस भूक निर्जोग। जिस भावे तिस अपना इलावे, जिस भावे तिस खेल खिलावे। बेसमार था गंत्य तुले, ज्यों बुलावो।

अष्टार अष्टपदी। आप कथे आप सुनने हार, अपहै का विस्तार, जाति सुभावे ता सृष्ट उपाय, अपने भाणे लई समाय, तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, अपन सूत सब जगत परोए, जाको प्रभु जीव आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए, सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सगल सृष्ट का जीता, जी जंत्र सबता के हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस रख है तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे, तिस तज अवर कहा को जाए, सब सिर एक निरंजन राय, जी की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ, गुण निदान बेअंत पार, नानक दास सदा बलिहार, पूरन पूर हे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल, अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो बे आप।

आए, भगत कर है हर की गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक एक जानिया। जन लागा हरि कह नाए, तिसकी आस न बिरती जाए। शिव को सेवा बन आई, हुकम बूझ परम पद पाई। इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसिया निरंकार। बंधन तोर पहे निर्वैर, अन दिन पूजह गुर के पैर। हे लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रव्यापै मेले।

दुर्लभ देह का करो उदार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का है सुहाओ। आठ पहर प्रभिखो नीरा, मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावहु, मन इच्छे नानक फल पावहु। हलत पलत दोयले हो सुवार, राम नामंतर उतार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै ति साच परिखिया। मंत्र नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पौ जाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निबह केव तुम्हारी। एक काटे करखो मन माहे, नानक बहुर नया वह जाए। तिस्ते दूर कहा को जाए, उपरे रखन हार त्याए। निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाही दूख, नाम जपत मन होवत सूख। चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन को कोय न पहुँचना। सिर उपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कार्य पूरा। मत पूरी अमर जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर रूप। तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रदान। जिस मन बसै सुहोत निहार, ताके निकट नयावत काल। अमर पै अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। श्लोक ज्ञानंजन गुरुदिया, ज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रगास। अष्टपदी संत संगंत्र प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्कट माही, अनिक रंग नाना दृष्टाही। नव निदमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। सुन समाधन हतैनाथ, कहना चाहिए चर्ज विस्माद। तीन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहा भगवंत। तरण माहे आकाश प्रयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल। बंथिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बैसन तरमाए, चार कुंट दह दिशे समाए। तिसते पिन नहीं कोठाओ, गुरपुर साध नानक सुख पाओ। वेद प्राण सिमरत मैं देख, शशिर सूर नक्षत्र मैं एक। बाणी प्रभु की सबको बोल है, आप डोल न कब हूं डोल है। सर्व कला कर खेल है खेल, मोल न पाइये गुने अमोल। सर्व ज्योत मैं जाकी जो, तार्यो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन मैं एहु विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुने सुबचन, सर्वव्यापी राम संग्रचन। जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो हुए सोई सुख माने, करण करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सबो ही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस पावै ता करे विस्तार, तिस पावै ता एकंकार। अनिक कला लखी न जाए, जिस भाव है तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कही है दूर, आपे आप भरपूर। अंतरगा जिस आप जनाए, नानक तीजन आप हो जाए। सर्वभूता वरतारा, सर्व नैना पिख नहारा। सगल समग्री जाका तन आपन, जस आप ही सुना। आवन जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। सब कह मदलिप्त हो रह, जो किछ कहना सुआपे कह। आज्ञा आवै आज्ञा जाए, नानक जा पावै ता ले समाए। इस्ते होए सुना ही बुरा, उरे कहो किने कछ करा। आप भला कर तू तत्नी की, आपे जाने अपने जी की। आप साज धारी सब साच, ओत पोत अपन संगराज। ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए ता सोझी पाए। जिसका किया सब प्रवान, गुरु प्रसाद नानक क्यों जान। जो जाने तिस दा सुख होए।
आप मिलाए ले प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुख जिसदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया जन आवन कह है सुआउ जन कह सिंह चित आवै नाऊ आप मुकत मुकत करे संसार नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाऊ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदे पूरे गुर का सुनो उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरहु गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस नित्या गोतरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो सा संगगन सागर तरहो हर तन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहजानंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित हो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुखभंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लुक आप तरह लुक कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लाका हर रंग जय जय शब्द नाहद वाजय सुन सुन अर्द करे प्रभु का जय प्रगटे गोपाल महांत कह माथी नान कुदरे तिन कह साथी शरण जोग सुन शरण आये कर कृपा प्रभा मिलाये मिटके बैर भय सबरे नम्रत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निब ही खेप हमारी प्रभ की उस्तुत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख मनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सोच निदान सर्व इच्छा था की पूर्ण होए प्रधान पुरु प्रगट सब लोए सब त्यूज पाए स्थान गौर न हुए आवण जाम हर तन खाट च लै जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव नित बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तब जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगा सब कहमत सगल तिवदास सुंदर चतुर तत् का पिता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मैं ताकी गत हुए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध सासंग मिटै संत कृपा ते जमते छुटै जा कै मस्त कर्म प्रपाए साध सर नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिस जन आवे हर प्रवचीत जन्म मरणता का दुख निवारे दुर्लभ दे तत्काल उदारे।

ताता के कर्म सब ते उचता की शोभा बनी। नानके गुण नाम सुख मनी सब ते उचता की शोभा बनी। नानके गुण नाम सुख मनी सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहिभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक वसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सह सियाण पां लख होहे तां इक न चलै नाल केव सचियारा होइए केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मे होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मे होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईऐ है इक ना हुक्मे बख सीस इक हुक्मे सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कहे ना कोय गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाणै निसाण गावै को गुण वडियाईयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेहे गावै को जी लै फिर देहे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाह साचा साहिब साच नाए पाखिया भाउ अपार आखै है मंगै है देह देहे दात करे दातार फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक इवै जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक देहे बुझाई सब न जिया का इक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस पावा विण पाणे के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा इक देहे बुझाई सब ना जिया का इक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर न आवई ता वात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोय न सुझई जे तिस गुण कोय करे सुनाए सद पीर सुरनाथ सुनाए धरत धवल आकाश सुनाए दीपलो पाताल सुनाए पोहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनाए दुख पाप का नास सुनाए ईसर ब्रह्मा इंद सुनाए मुख साला हनुमंद सुनाए जुग जुगत तन भेद सुनाए शास्त्र सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनाए दुख पाप का नास
सुना है सात संतोख ज्ञान, सुना है आठ सठ का स्नान, सुना है पढ़ पढ़ पावै मान, सुना है लागे सहज ध्यान, नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश, सुना है सारा गुणा की गाह, सुना है सेख पीर पातशाह, सुना है अंधे पावै राह, सुना है हाथ होवै असगाह, नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहै पिछे पछुताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होवै मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध, मन्ने मोह चोटा न खाए, मन्ने जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से तीसन बंद, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने पावह मुख द्वार, मन्ने परवार साधार, मन्ने तरह तारी गुर सिखो, मन्ने नानक पावह न पेखो, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान, पंचै सोहै दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान, जे को कहै करै विचार, करते कै करणै नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै होवै सचियार, तबलै उपर केता पार, धरती होर पर होर होर तिस ते पार, तलै कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया किता होए, किता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, किता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन राहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाख सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करह पार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख काहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, भरियै हथ पैर तन देह, पानी धोता है उतर सोखे
मूत पलिती कपड़ होए, दे साबून लइए ओ धोए, भरिए मत पापा कै संग ओह।

सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेव नमस्तंगापे वह नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्वगौने नमो सर्वपहुने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग अभरणे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वतंदे नमो सत अबंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्त रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वशोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो योग योगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी छंद त्वा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है आते हैं अपे हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमान हैं निधान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अपूत हैं अपर्ण हैं अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचंज हैं अमीक हैं रफीक हैं अतंध हैं अबंध हैं निर्भूज हैं असूज हैं अकाल हैं अजाल हैं अल्लाह हैं अजा हैं अनंत हैं महंत हैं अलीक हैं नृसीक हैं निर्लंब हैं असंभ हैं अगम है अजम है अभूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निधान है अनेक है फिर एक है कुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पहुणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे समस्ति विभूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजवेश्वरं परम रूपे नमो योग योगवेश्वरं परम सिद्धे नमो राज रजवेश्वरं परम वृद्धे नमो शास्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी परमी अपोगी अपुगते नमो योग योगवेश्वरं परम युगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पुहुप पुहुपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इष्णानं नमो मंत्र मंत्रं नमो यंत्र यंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तो निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृद्ध कर्ता अधो उर्ध अर्धं अगं ओग हर्ता परं परम परमेश्वरं पुरुषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्त पराजी समस्तास्तुतामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात छंद अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं प्रमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत परीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वगयानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदसिद्धं निवासी चरपट छंद त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले
रुआल शांत त्वा

तुहार। सकल द्वार कौ छाड कै गहे तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया। सहज सेती मन वजियां वादाइयां, राग रतन परवार परियां। शब्द गावण आईयां शब्दोता गावहो हरि केरा, मन जने वसाया कहे नानक आनंद हुआ। सतगुरु मैं पाया ए मन मेरेया, तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सवारणा। सबना गलां समरथ स्वामी, सो क्यों मनहो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किश है। जिस देह सो पावे सदा।

सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजहो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आंख वखाणी। हर हर नित कर है रसना, कहया कछु न जानी। चित जिन काहिर लया माया, बोलन पै रवाणी। कहे नानक सतगुरु बाजहो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रत

श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाओ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस जठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नाउ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाए।

जेकर सूतक मन्नी है सब तै सूतक होए, गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जिया बाज न कोए, पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोए, सूतक क्यों कर रखे।

सुनते पुनीत कहते पवित, बिनवंत नानक गुर चरण लागे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ऐसा बणज करहु गृह भीतर जित उतरै भूख प्यासा है। सगले कर्म धर्म जुग साधा बिन हर रस सुख तिल नहीं लाधा। भई कृपा नानक सतसंगे तौ धन फिर आनंद उलासा है। धन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् का रचन रचाना। जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासा है। धन कह तू वस मै नाले रह सुखवासी बाल गोपाले तुझे बिना हो।

मेरे बिन सतगुर पच मुए साकत निगुरे गल जम फसा हे मन मुख आवै मन मुख जावै मन मुख फिर चोटा खावै जितने नरक से मन मुख भोगै गुरमुख लेप न मासा हे गुरमुख सोए जे हर जी उपाया तिस कौन मिटावै जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासा हे हौं बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विछड़ना कत ही जासा हे गुण निदान किछ कीम न पाई घट घट पूर रहो सब ठाई

जाचहि सिद्ध साधिक बनवासी, जाचहि जति सती सुखवासी। एक दातार सगल है जाचिक, देहदान सृष्टि जाहि। करहे भगत अर रंग अपारा, खिन मह था प्यो थापन हारा। हारू तूल बेअंत स्वामी, हुकम मन पर भतीजा, हुकम मन भगतीजा हे। जिस देह दर्श सोई तुद जाने, ओह गुर कै शब्द सदा रंग माने।

अवर कहा किछ की जाहे। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा, गुर पूरैले टूटा गंडा। सुरत शब्द रिद अंतर जागी, अम्यो चोल चोल पी जाहे। मरे नाही सद सद ही जीवे, अमर भया अविनाशी।

नित नित रंगा, कटे नाही तोली जाहे, बारह कंचन शुद्ध कराया, नदर सराप वन्नी सचड़ाया, परख खजाने

दास सदा कुर्बानी संत संग महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन पी जाहे मारू महला पंजवा सो लहे एक।

गुर शास्त्र सिमरत खट करमा, गुर पवित्र अस्थाना ही, गुर सिमरत सब किल बिख नास है, गुर सिमरत जामो संग न फास है, गुर सिमरत मन निर्मल हुवै, गुर काटे अपमान नाही, गुर का सेवक नरक न जाए, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याए, गुर का सेवक साध संग पाए, गुर करदा नित जीदा नाही, गुर द्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए, कल कलेश मिटाए सतगुर, हर दरगाह देवे माना हे, अगम अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक को बिघन न भगती, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना हे, गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहया गोसाई, ऊच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहज ध्याना हे, गुर मिलया सब तृष्ण बुझाई, गुर मिलया नह जो है माई, सत संतोख दिया गुर पूर।

आदि निरंजन प्रभ निरंकारा, सब मह वरतै आप निरारा, वर्ण जात चिहिन नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपाए दा। लख चौरासी जो न सबाई, मानस कौ प्रभ दी वडियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाए दा। कीता हुआ तिस क्या कहिए, गुरमुख नाम पदार्थ लहिए, जिस आप भुलाए सोई भूलै, सो बूझै जिसै बुझाए दा। हरक सोग का नगर इहो किया, से उबरे जे जो सतगुर सरणैया, त्रिहा गुणा ते रह निरारा, सो गुरमुख सोभा पाए दा। अनिक कर्म किए बहुतेरे,

कलयुग मैं कीर्तन परदाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, आप तरै सगले कुल तारे, हर दर्द है पत स्यो जाएदा, खंड पताल दीप सब लोआ, सब काल है वस आप प्रभ किया। निहचल एक आप अविनाशी, सो निहचल ज्योतिषै ध्याएदा, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानहु मानस देहा, ज्यों जल तरंग उठै बहुपाती, फिर सललै सलल समाएदा। एक जाचक मंगै दान द्वारै, जा प्रभ भावै ता कृपा धारै, देहो दर्श जित मन तृप्तासै, हर कीर्तन मन ठहराएदा। रूड़ो ठाकुर कितै वस न आवै, हर सो किछ करे जे हर क्या संता भावै, कीता लोड़न सोई करायन, दर फेर न कोई पाएदा। जिथे आओ कट आए बनत है प्राणी, तिथे हर त्याई सारंग पानी, जिथे पुत्र कलत्र न बेली कोई, तिथे हर आप छड़ाएदा। वड्डा साहिब अगम थाहा, क्यों मिलिए प्रभ वे परवाहा, काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो विच संगत वासा पाएदा। हुकम बूझै सो सेवक कहियै, बुरा भला दुइ संसर सही है, हौ मैं जाए ता इको बूझै, सो गुरमुख सहज समाएदा। हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी, अनिक रंग करै बहुपाती, जो पिता पूत लाड़ाएदा। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिलिए जा लय मिलाई, गुरमुख प्रगट भया तिन जन कौ, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएदा। तू आपे करता कारण करना, सृष्ट उपाय धरी सब धरना, जन नानक शरण पया हर द्वारै, हर भावै लाज रखाएदा। मारू सोलहे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो दिसै सो एको तू है, बाणी तेरी श्रवण सुनियै, दूजे अवर न जाप सकाई, सगल तुम्हारी धारणा, आप चितारे अपना किया।

कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई जिसनु लाए लय सो सेवक जिस वट भाग मथाए ना गुर की महिमा वेद न जान है तुझ मात सुन सुन वखाण है पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लाएना जाकी सोए सुनी मन जीवै हृदय वसै ता ठंडा थीवै गुरमुख हो लाए ता शोभा पाए तिस जम कै पंथ न पाएना संत

तुम करहो दया किरमायणा, निर्गुण कौ संग लेहो रलाए, कर कृपा मोहे टह लै लाए, पखा फेरू पीसो संत आगे, चरण धोए सुख पाएना। बहुत द्वारे भ्रम भ्रम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरण आया, सदा सदा संतै संग रखो, इहो नाम दान देवायना। भय कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया सतगुर पूरे, सुख सहज सदा आनंदा, नानक दास दसाईना। मारू सोलहे महला पंजवां।

उपार्जना। सिमरह खंड दीप सब लुआ, सिमरह पाताल पुरिया सच सुआ। सिमरह खाणी सिमरह बाणी, सिमरह सगले हर जना। सिमरह ब्रह्मे विष्णु महेशा, सिमरह देवते कोड़ तेतीसा। सिमरह जख दैत सब सिमरह, अगणत न जाई जस गणा। सिमरह पस पंखी सब भूता, सिमरह बन पर्वत अवधूता। लता बलि साख सब सिमरह, रव रहया स्वामी सब मना। सिमरह थूल सूखम सब जनता, सिमरह सिद्ध साधिक हर मनता। गुप्त प्रगट सिमरह प्रभ मेरे, सगल भवन का प्रभ तना। सिमरह नर नारी आश्रमा, सिमरह जात जोत सब वरना। सिमरह गुणी चतुर सब बेते, सिमरह रैणी अर दिना। सिमरह घड़ी मूर्त पल निमका, सिमरह काल अकाल सुच सोचा। सिमरह सौन शास्त्र संजोगा, अलख न लखिय एक किना। करन करावन हार स्वामी, सगल घटा के अंतर जामी। कर कृपा जिस भक्ति लाभ हो, जन्म पदार्थ सो जिना। जाकै मन बूठा प्रभ अपना, पूरै कर्म गुर का जप जपना। सर्व निरंतर सो प्रभ जाता, बहुड़ न जोनी भरम रुना। गुर का शब्द वसै मन जाकै, दुख दर्द भ्रमता का भागै। सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सहज तुना। सो तनवंता जिन प्रभ त्याया, सो पतवंता जिन साध संग पाया। पार ब्रह्म जा कै मन उठा, सो पूर कर्मा ना छिना। जल थल महियल स्वामी सोई, अवर न कहिए दूजा कोई। गुर ज्ञान अंजन काट्यो भ्रम सगला, अवर न दिसै एक बिना।

अतुल न जाई क्या मिना, तू करता तेरा सब किया, तुझ बिन अवर न कोई बिया, आद मद अंत प्रभ तू है, सगल पसारा तुम तना, जम दूत तिस निकट न आवै, साध संग हर कीर्तन गावै, सगल मनोरथ ताके पूरन, जो श्रवणी प्रभ का जस सुना, तू सबना का सब को तेरा, साचे साहिब गहर गंभीरा, कहो नानक सेई जन उत्तम, जो भाव है स्वामी तुम मना, मारू महला पंजवा, प्रभ समरथ सर्व सुख

हर निर्मल रापै मंगना। श्रवणी सुनो बिमल जस स्वामी, एका ओट तजो बिख कामी। निव निव पाए लगो दास तेरे, कर सुकृत नाही संगना। रसना गुण गावे हर तेरे, मिटह कमाते अव गुण मेरे। सिमर सिमर स्वामी मन जीवै, पंच दूत तज तंगना। चरण कमल जप गोहित चरियै, संत संग मिल सागर तरियै। अर्चा बंदन हर समत निवासी, बहुड़ जौन ना नंगना। दास दासन को कर लेहो गोपाला, कृपा निदान दीन दयाला। सखा सहाई पूरन परमेसर, मिल कदे न हो भी भंगना। मन तन अर्प धरी हरिया गै, जन्म जन्म का सोया जागै। जिसका सा सोई प्रतपालक, हत त्यागी होमै हंत ना। जल थल पूरन अंतर जामी, कट कट रव्या अछल स्वामी। परम भीत कोई गुरपूरै, एक रव्या सरबंगना। जत कत पेको प्रभ सुख सागर, हर तोट भंडार नाही रतनागर। अगह अगाह किच मित नहीं पाईऐ, सो बूझ है जिस किरपंगना। छाती शीतल मन तन ठंडा, जन्म मरण की मिटे डंजा। जन्म मरण की मिट भी डंझा, कर गह काट लिए प्रभ अपने। अम्योतार दृष्टंगना, एको एक रव्या सब ठाई। तिस बिन दूजा कोई नाही, आद मद अंत प्रभ रव्या। कृष्ण बुझी जपत त्रिष्ण बुझी परमंगना। गुर परमेश्वर गुर गोबिंद, गुर कर्ता गुर सद बख्संद। गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना। जो पेखा सो सब किछ स्वामी, जो सुनना सो प्रभ की बानी। जो कीनो सो तुम्हें करायो, शरण सहाई संत है तना। जाचक जाचह तुम्हें अराध है, पतत पावन पूर्ण प्रभ साध है। एको दान सर्व सुख गुण निद, आन मंगन ने किंचना। काया पात्र प्रभ करने हारा, लगी लाग संत संगारा। निर्मल सोए बनी हर बाणी, मन नाम मजीठे रंगना। सो लह कला संपूर्ण फलया, अनंत कला हुए ठाकुर चढ़या। अनंत विनोद हर नाम सुख नानक, अमृत हर अमृत रस हर पुंच

जिनको कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लै हृदय पराते, सगल नाम निदान तिन पाया, अनहद शब्द मन वा जंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जिहबा, सत नाम तेरा परा पूरबला, कहु नानक भगत पै सरनाई, देहो दर्श मन रंग लगा, तेरी गत मित तू है जान है, तू आपे कथ है ते आप वखाण है।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाया कमाए अशांत पापी पाप अशांत अनूर यार अशांत मलेर मार पाए अशांत निंदक।

गुण तेरे नहीं कोई, बिन गुण की तेरे पंच न होए। स्वस्थ आस्तानी ब्रह्माओं सत्स्वान ब्रह्म

कर्ता निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख कल वाए संख पापी पाप असंख मूर यार करे फिराए संख मलेच मल पाखाए असंख निंदक करे नानक नीच कहे जा मारे न जामा के जो तुम पावे सही करी कर सदा सदा मत संत नाम संत नाम राम राम संत दो अच्छा।

निर्भउ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूर्ख यार करे फिराए अशांत मलेच माल पाक खाए अशांत निंदक।

ना नाम जपया वंड छकया देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता किना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघनिया धर्म हित शीश दिते बंद बंद कटवाए खुप

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सोचे सोच न हो गई

अशांत मूर्ख अंध कोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ अशांत पापी पाप अशांत मूर्ख यार कर जाए अशांत मलेच्छ मल पाए अशांत निंद

जग मर लाओ सब तेरे बनाई होए बिन बुद्धि के पंथ होए बस आसानी ब्रह्मा सत सुहाग ब्रह्म कमल सुवेला भगत कमल कमल।

कृपा पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैदम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई।

संत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कालवट हत्या कमाए संत पापी पाप असंत मूड़े आल करे संत मलेच माल पाए असंत

निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैदम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच।

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख गल वाय अशंख पापी पाप अशंख मूर यार करे बुझाए अशंख मलेच मार भाग खाए अशंख निंदक।

कर्ता निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाय शांत पापी पाप अशांत पूरे आर करे फिर शांत मलेर मार पाए अशांत निंदक करे पाप नानक नीच कह मारे न जावा जो तुम पाव है सही करीता सदा सलाम संत नाम संत नाम राम राम संत दो।

पे जाए ए साला जी साला है नदियां से बाहर कौन सोम ना जान समुद्र सा सरता गिरी पुल नामने अंत में सती कहना अंत में करने देना अंत में देखना।

धर्म करमी करमी होए सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म पवे कच्छ खाई उथे पाए नान गया धर्म खंड का एहो ज्ञान खंड का किते पौन पानी वह संतर किते कान मरे किते परमे घाट करिए रूप रंग मेरे।

कर्ता निर्भौ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच सोचे सोच न हो गई

अनंत मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत गड़बड़ हत्या कमाए संत पापी पाप असंत कूड़े यार मरे फिराए संत मलेच माल पाक खाए असंत निंदक करे नानक नीच कहे जा बारे न जा जो तुम पावे सही परिपाल।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हृदय कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूड़े यार मरे सुधाए अशांत मलेच मल पाक खाए अशांत निंदक करें पा नानक नीच कहें क्या बारे न जाना